0: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
1: हाँ तो
0: मैं कुछ कह रहा था,
1: बोलो ना, भूल गए?
0: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चले
2: चलें दे।

दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कचर बचर सबको गोली मारो। दिल वालों के इस मेले में मौज मना लो यारो, कस्टम बस्टम कचर बचर सबको गोली मारो। मुक्त मिले जब दिल की बुटिया फिर सदमे को झेलो, मजा ले लो। घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा गेलो ओ गेलो ओ गेलो ओ घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा गेलो ओ गेलो ओ गेलो ओ कल की बातें कल पे छोड़ो आज मजा ले लो भाई। घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा गेलो।

बाटा घर में आज नहीं है आटा, खूब चलेगा बाटा। कह गए बेटा जानी वाकर, अरे वाह जाने वाकर, वाह वाह।

0: pak ik juist de verkeerde, want het is niet de bedoeling dat ik de jaren 80 nu erbij ga halen. Dus laat ik nu echt wel gaan naar mijn 90s song.
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर एक गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नीलॉन्ग, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale. Ja, Kizika Moendesanskar heet. Ujala Radio per vermaaist aap deze te heen. Pandra vermaaist voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

ये उजाला रेडियो है, सुनने वालों हमारा हिस्सा का प्रोग्राम में आप लोगों को स्वागत करते हुए आप गीत को सुने फिल्म अनारी से।

तुझे बिठा के बंद कर लूंगी मैं अपनी आंखें और पूजा करूंगी तेरी। लता जी की आवाज, फिल्म का नाम फकीरा। उजाला रेडियो पर आप सुने।

दिल से दिल की दौड़ बांधे। फिल्म छाया और गीत के गाने वाले लता एंड मुकेश जी। उजाला रेडियो है सुनने वालों, कोई भी जानकारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो दफ्तर के समय आप तार करें, और आप भी हम लोगों के वेबसाइट पर देख सकते हैं www.ujala.nl।

दिल से मिला के दिल प्यार कीजिए। एक पुराना सुना सुने लता जी की आवाज में फिल्म टैक्सी ड्राइवर से एक ऐसा ही पुराना सुंदर गीत आप प्रोग्राम में अब सुनिए।

तुझे दिल ढूंढ रहा है, सन ऑफ इंडिया, हाँ फिल्म का नाम सन ऑफ इंडिया, और गीत के गाने वाले मोहम्मद रफी एंड लता जी। ये उजाला रेडियो है।

क्या गीत है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो पर। सुनने वालों हाँ क्या कहना चाहता था हम कि आज का तमाम प्रोग्राम कर देता हूँ फिर आपका नाम। आशा जी

आशा जी के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब को भी आप सुने फिल्म वक्त से निकाला हुआ गीत जो पेश की गई है उजाला रेडियो पर, वही स्टेशन जो आपके साथ साथ भी और हजारों लोग सुनते हैं।

बहुत ही सुंदर गीत। फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर। नफरत से है मुझे नफरत, नफरत से है मुझे नफरत, और प्यार से है मुझे प्यार। यह है उजाला रेडियो आपका यार।

ए कोई अब तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुझ में समा जाऊं। लता जी से आप सुने फिल्म कर्तव्य का गीत और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

हम तुम से जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ और फिल्म का नाम एक सपेरा एक लुटेरा।

0: ugyanaz Szona Csirejá.
1: रेडियो मैं हूँ लॉयड महावीर. हमारी तरफ से आप सभी को एक शुभ सुबह पेश कर रहे हैं. अनहेल खुद मोरखन. आज शुक्रवार 12 तारीख जून है और उजाला रेडियो के जरिए अभी थोड़ी देर में हम लाने वाले हैं आप लोग के फरमाइश और फरमाइश पेश किया जाएगा दनहाक के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजवाली के वास्ते. 80 साल तख्त से फयादा जो कि आज आपका है.

Sunnemalo, Hamani terug de avond op de koek. Shubdin, peeske jarahe. Het is vrijdag 12 juni. 12 tarik jun ka program hai, jo aap sun rahe hai. Aur ham aap ke saath aaj rahenge kariban sham ek baje tak. Lekin sabse pehle ham farmaish pesh karne wale hain Den Haag ke rehne wala Shriman Mohan Suraj Bali ke waaste 80 saal ka janmdin jo ki aaj hai bhagwan se prarthna kiya ja raha hai lambi aayu ke waaste taagat tandroosti ke liye aur ye bhi prarthna hai ki upar wala aapko hamesha khush rakhe har ek bimari se har ek musibat se door rakhe Shriman Mohan Suraj Bali ye janmdin barambar badhai ho shubhkamna pesh hai हार्दिक से बधाएं हो दुख दर्द सहे बन जाते भैया दुख में दे देन हाँ के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन आज है तख्तख सफेद रखे इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर देन हाँ के रहने वाले प्यारी प्यारी धर्म पत्नी श्रीमती ईशाना पराह प्यारा प्यारा पति देव के लिए रोसिता और नादिया सूरजबाली पिता के लिए सिंह और सुधीर मुन्ना सिंह की तरफ से प्यारा प्यारा ससुर के लिए हार्दिक से बधाई और शुभकामना प्यार दुलार के साथ पेश किया जा रहा है

आज शुक्रवार है और भी 12 तारीख जून है दनाह के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन है तख्त सफ़ी आ रहा है। इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर धर्मपत्नी ईशाना पराह प्यारा प्यारा पति देव क्लीम रोसिता और नादिया सूरजबाली पिता क्लीम सुधीर मुन्ना सिंह ससुर के लिए हार्दिक से बधाई और शुभकामना प्यार दुलार के साथ फरमाइश के। दनहाक के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबाली का आज 80 साल का जन्मदिन है तख्त सफ़ी आड़ा है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर धर्मपत्नी श्रीमती ईशाना पराख प्यारा प्यारा पति देव क्लीम रोसिता और नादिया सूरजबाली पिता क्लीम सुधीर मुन्ना सिंह ससुर के लिए बधाई शुभकामना के साथ प्यार दुलार मोहब्बत के साथ पेश करें।

आज शुक्रवार 12 तारीख जून को दिन हक के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन है, तख्त सफे आ रहा है। इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी लीफ लीफ धर्म पत्नी श्रीमती ईशाना पराह प्यारा प्यारा पति देव के लिए, रोशिता और नादिया सूरजबाली पिता के लिए, सुधीर मुन्ना सिंह ससुर के लिए बधाई शुभकामना प्यार मोहब्बत के साथ फरमाइश के। श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर पत्नी श्रीमती ईशाना पराह पति के लिए, रोशिता और नादिया सूरजबाली प्यारा प्यारा पिता के लिए, सुधीर मुन्ना सिंह प्यारा प्यारा ससुर के लिए हार्दिक से बधाई शुभकामना प्यार दुलार मोहब्बत के साथ पेश करें।

आज शुक्रवार और भी 12 तारीख जून है, तो आज बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि दनहाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजमाली का 80 साल का जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्यारी प्यारी धर्मपत्नी श्रीमती ईशाना पराह प्यारा प्यारा पति के लिए, रोसिता और नादिया सूरजमाली पिता के लिए, सुधीर मुन्ना सिंह प्यारा प्यारा ससुर के लिए हार्दिक से बधाई शुभकामना के साथ फरमाइश के। उमिरिया कट्टी जाए रे या घटी जाए रे, श्रीमान मोहन सूरजमाली 80 साल तख्त सफेद आज आपका है, आपका जन्म दिवस है 80 साल का। इस खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी धर्मपत्नी ईशाना पराख प्यारा प्यारा पति के लिए, रोसिता और नादिया सूरजमाली पिता के लिए, और सुधीर मुन्ना सिंह ससुर के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।

देन हाख के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरज बालिका 80 साल का जन्मदिन आज है. जन्मदिन के खुशी के मौके पर धर्म पत्नी श्रीमती ईशाना पराख, प्यारा प्यारा पति के लिए रोसिता और नादिया सूरज बाली, पिता के लिए सुधीर मुन्ना सिंह, ससुर के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ फरमाइश के मोहन सूरज बाली का 80 साल का जन्मदिन आज है. तख्त सफेद रहा है. इस खुशी के मौके पर नीदरलैंड और सूरीनाम के रहने वाले समस्त परिवार सूरज बाली, लीन हेनरिक, ओम प्रसाद और फोनी की तरफ से भाई क्लीन फैमिली पराग, लीन हरिदत्त, इंदिरा, कमला, रोजा, सुनील, सीता और मीला बहनोई के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें.

Den Haag के रहने वाला श्रीमान मोहन सुरजवानी का 80 साल का जन्मदिन आज है। खुशी के मौके पर सुरीनाम और नीदरलैंड से परिवार सुरजवानी लीन हेनरिक ओम प्रसाद और वोनी की तरफ से भाई के लिए फैमिली पराग लीन हरिदत्त इंदिरा कमला रोसा सुनील सीता और मीला की तरफ से बहनों के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाइयां शुभकामना के साथ फरमाइश के। श्रीमान मोहन सुरजवानी का आज 80 साल तख्त से फरियादाग है। इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर दनाह के रहने वाले पत्नी श्रीमती ईशाना पराग प्यारा प्यारा पति देव के लिए दिलो जान से प्यार मोहब्बत शुभकामना बधाई के साथ फरमाइश करें आपके लिए।

देन हाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरज बाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी लिव लिव धर्म पत्नी श्रीमती ईशाना पराग प्यारा प्यारा पति के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ फरमाइश के। मोहन सूरजवाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर पत्नी ईशाना पराग प्यारा प्यारा पति के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ अर्ज कर रहे हैं।

Haag, Kirchne Valais, Sriman, Mohan, Surjbalika, Assisal, 80ste verjaardag, Haatje en Goesje, Gemalkeper, Aapke, Piari, Piari, Dharampadni, Ishana, Paraag, Piara, Piara, Lieve Man, Pati Devi Kleber, die Piar, Mahabat, Kesaat, Vermaaske. श्रीमान मोहन सूरजबाली 80 साल का जन्मदिन जो आज है बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं पेश है भगवान से प्रार्थना किया जा रहे हैं लंबी आयु के वास्ते ताकत तंदुरुस्ती के लिए और ये भी प्रार्थना है कि आपको हर एक मुसीबत से हर एक बीमारी से दूर रखें उजाला रेडियो का प्रोग्राम जरूर आप सुन रहे हैं बाकी की फरमाइशें कमर्शियल ब्रेक के बाद हम जारी करने वाले हैं 11 बजे के उस पार सुन वालों उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश देना है स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar €100 op UR Ujala Radio.

यू आर उजाला रेडियो, ये है और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में फरमाइशें जारी किया जा रहा है। परिवार सूरज बाली के लिए आज जबकि शुक्रवार 12 तारीख जून है, तो vandaag vrijdag 12 juni de jarige is Den Haag के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन है, 80वां verjaardag है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बधाइयां शुभकामना पेश किया जा रहा है। भगवान से प्रार्थना है लंबी आयु के वास्ते, ताकत तंदुरुस्ती के लिए, और ये भी प्रार्थना है कि आपको हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारी से दूर रखे, आप सदा खुश रहें। श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन के खुशी के मौके पर प्यारी प्यारी धर्मपत्नी श्रीमती ईशाना पराख प्यारा प्यारा पति के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ अर्ज करें, फरमाइश करें ये नगमा।

डेन हाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजमाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर आपके प्यारी प्यारी धर्मपत्नी श्रीमती ईशाना परा प्यारा प्यारा पति के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नामा को फरमाइश के फिर एक और प्यार मोहब्बत के बयां पेश है आपके वास्ते। श्रीमान मोहन सूरजमाली का 80 साल तख्त सफे आ रहा है। खुशी के मौके पर पत्नी श्रीमती ईशाना पराग प्यारा प्यारा पति के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ बधाई शुभकामना के साथ पेश है।

0: पे बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।
1: ईश्वर रब खुदा भगवान के कई रूप हैं, लेकिन एक ऐसा रूप जिसमें सब समाया है वो है पिता। पिता क्या है ये शब्दों में बयां कर नहीं सकता, शायद पिता से बढ़कर इस जहां में कोई हो ही नहीं सकता।

Den Haag के रहने वाला श्रीमान मोहन सुरजवाली का आज 80 साल का जन्मदिन है. इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर लड़कन रोसिता और नादिया सुरजवाली प्यारा प्यारा पिता के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नहमा को फरमाइश किए. श्रीमान मोहन सुरजवाली का 80 साल का जन्मदिन आज है. जन्मदिन के खुशी के मौके पर रोसिता और नादिया सुरजवाली प्यारा प्यारा पिता के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें.

देन हाँ के रहने वाला श्रीमान मोहन सुरजवानी का 80 साल का जन्मदिन आज है. जन्मदिन के खुशी के मौके पर रोसीता एंड नादिया सुरजवानी प्यार प्यारा पिता के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ दुलार के साथ फरमाइश के. श्रीमान मोहन सुरजवानी का 80 साल तख्त सफिया रहा है. इस खुशी के मौके पर रोसीता एंड नादिया सुरजवानी प्यार प्यारा पिता के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत दुलार के साथ पेश करें.

Den Haag के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर रोसिता एंड नादिया सूरजबाली प्यारा प्यारा पिता के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ नाहमा को फरमाइश किए प्यार दुलार प्यार ही प्यार के साथ। उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में आखिरी फरमाइश हम आपको सुनाने को जा रहे हैं। देन हाग के रहने वाला श्रीमान मोहन सूरजबाली का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर देन हाग और रोटरडम के रहने वाले जीवन दर्शन अक्षय और अर्शाद नाना के लिए जीवानो और दामनी नन्वा ससुर के लिए बड़ी प्यार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।

en Haker hinnen wel eens Riman Mohan Surjbalika Assisalka Jenem Dinache 80ste verjaardag gaat je Gushik Malkepe Den Haag or Rotterdam keer hinnen wel Jivan Darshan Akshaya en Arshad Nanakle Jivano en Damini Nanwa Sasurkle Badi pyar mohabbat badhai shubh kamna ke sath nahma ko farmaish ke Den Haag ke rehne wala Sriman Mohan Suraj Bali aapke aaj 12 tarikh jun ko aaj shukrawar 12 tarikh jun ko in het jaar 2026 mein aapka 80 saal ka janmdin hai 80ste verjaardag hai ye janmdin ke upaksh par hardik se badhai shubh kamna pesh kiya ja raha hai samaj parivar ki taraf se samaj parivar Suraj Bali samaj parivar parakh ki taraf se bahut bahut badhaiyan shubh kamna pesh hai आज आप अपना जन्मदिन धूमधाम के साथ परिवार के साथ जरूर मनाइए उजाला रेडियो के जरिए जितनी से फरमाइश हमने पेश किए हैं हम यही आशा कर रहे हैं कि आपको जरूर से पसंद आया हुआ होगा एक वेंस द हेल फैमिली सूरज बाली एंड इन इट बिजोंडर द हेयर मोहन सूरज बाली एंड हेल फैन द मोई से फरियारी मनाइए उजाला रेडियो के जरिए सुनने वालों फरमाइश देना है Stuur je e-mail naar info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro. Tot straks na 12 uur. Koffie en chai op Ujala Radio. Zerur Sunlina. Koffie.

अग्नि संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

जो बहार आने पर याद आती हो। फिल्म तकदीर का गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज। मुझे तुम उजाला रेडियो है ये सुनने वालों। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप हमेशा देखें वेबसाइट पर ujala.nl। अगला गीत जो हम तैयार रखे हैं सुनाने के लिए वो होंगे उदित नारायण जी की आवाज में।

अब तू हा कर या ना कर, तू है मेरी किरण। उदित नारायण की आवाज में गीत आप सुने, फिल्म डर से निकाला हुआ, हो जाला रेडियो। फिल्म आशिकी का गीत आप सुनिए।

0: ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।
1: हेलो, पापा की जिद के आगे हार गए। शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
2: ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें, प्यार छोटा नहीं है।

कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

आखिरी दम इश्क पहली सांस भी और इश्क ही है आखिरी दम. Yeah, the symphony just means sendless and such in jigger on the vocals.

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर हॉनर ट्यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

करती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

उजाला रेडियो पूरा देश में दिया बे प्लस पर हमेशा और हर एक जगह सुनिए, यू आर द नंबर वन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन।

फिल्म का नाम पूरब और पश्चिम, गीत के गाने वाले लता जी, महेंद्र कपूर और मनहर उदास। सुनने वालों, अब उजाला रेडियो का प्रोग्राम में चलिए, पेश है एक बैठक गाना, हरिदत जय राम।

0: मनुष्य के जन्म पायल है, मनुष्य रहा इंसान, एक दूसर के धन दौलत हड़प के बस गैल मर, इस जन्म में देखा गधा बन के भोगे भैया हफीज।
1: अच्छा भैया जयराम, तो जब तुम मरिए तब तुम कौन की हो?
0: देख भैया हफीज, जो हम भी कोई के धन दौलत हड़प के खाए के मर जाए और जो मरब, तैसे ही गधा बन के हम भी भोग अपन करनी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

और तुम कितनी सुंदर हो। फिल्म मोहरा का गीत उजाला रेडियो पर आप सुने। Wilt u ons bellen, dan altijd tijdens kantooruren op het nummer 020 409 0807.

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

हे सुनो वालो, मैं हूँ आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहाँ प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

0: तेरी क्या है किसी ने मारा? टूट गया क्या तेरा बंदर, टूट गया क्या हाथी? टूट गया क्या तेरा बंदर, टूट गया क्या हाथी? नाना क्या फिर तुझसे बिछड़ गया तेरा कोई साथी?
1: कौन?
2: काबली वाला।